मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ,

तारे फिरे, बासक कोट सेज बिस्थरे, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बारिक अरमाता, ऐसा हर सेती मन राता, प्रणवे नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत।

राव। हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए, ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा, पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस, जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब

लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग, बिन गुर मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध।

बताए गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ।

गुरु नाम दृढ़ाया जप जपेयो, बिन गुर भगत ना पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

जीवत मरै अंदिन साच नाम उचरै इन विद प्राणी दुत्तर तरै बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोए फल लाए।

भतीजा। राते साथ हर नाम निहाला, दया करो प्रभु दीन दयाला। तिस बिन अवर नहीं मैं कोए, ज्यों पावे त्यों राखे सोए। गुरु गोपाल मेरे मन पाए, रह न सकूं दर्शन देखे। बिन सहज मिलो गुर मेल मिलाए रहाओ। ए मन लोभी लोभ लुवाना, राम विसार बहुर पछताना। बिचरत मिलाए गुर सेव रांगे, हर नाम दियो मस्तक बढ़ पागे।

अंकारे गुर राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साथ समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चै पक्षों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाय गुण गोविंद रहाओ गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसे।

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर छावकणी फूली बन राए गुरमुख बिगतै सहज सुभाए अन दिन कीर्तन करें दिन रात सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर भोग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक पोचे तै फिर जून ना आवे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए।

होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करें जन देख हजूर संत जना की पग पंकज दूर हर सेती सद रहे लिव लाए पूरे सतगुरु दिया बुझाए दासा का दास बिरला कोई होए ऊतम पदवी पावे सोए रहाओ एको सेवो अवर न कोए जित सेवे सदा सुख होए ना ओ मरे ना आवे जाए तिस बिन अवर सेवी क्यों माए से जन साचे जिनी साच पछाणिया आप मार सहजे नाम समाणिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक सियान हर रस चाखे ता खुद होए नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मन्ने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

मैं पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुर सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवट पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन चलिया दूजे दोए रहाओ, यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा दिन लाए, यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मो शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कदे तोए रहाओ, सत गुर पानी शब्द सुनाए, ए जग हरिया।

तूर तिना की अकुलिय पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए, राग बसंत मेला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनछे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृपछे, जन्म जन्म के किल विखमल परया।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे ज्यो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिरी दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे, बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाईए, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाईए, गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याईए, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाईए रहाओ, कर रतन लाल बहु मानक लादे, मन प्रम्या लह न सकाईए, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे, त्यो सतगुर वस्त लहाईए, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाईए, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईए, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईए, बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकरे काल सुलुंज, गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुन्य, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज, राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज, हम डूबदे पाथर काड ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तार ओरिद अंत।

पैसे उधारन गुरे पीर, तुम दाते प्रभ देनहार, निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान,

तरों टेक, सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से।

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए एव पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन।

गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित्र होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम रहाओ जिसके तारे तरण आकाश

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविक काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार करके।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तक नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिन लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

पद पाया, गुरु मिल नानक खसम त्याया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुरु मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुरु मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुखतनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौलियो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा

नानक प्रभ कृपा भई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभु आप, गुर अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निचल गुण गाओ। नानक

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इन बिद पासा टालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इस नाम

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने, जिसनों कृपा

भाणा कहो नाम कह पया द्वारे रख ले वो मुगद अजान बसंत हिंडोल मैला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत

के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद।

प्रेम आधार, गुर शब्दी बिक प्यास निवार, मोहन मोह लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तो है, नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नह अस्थिर दिसे एक

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हों मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था।

व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधू।

मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे। रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए। लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए। सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार। गुर के चाकर ठाकुर भाणे, बख्श लिए नाही जमकाने। जिनके हृदय एको भाया, आपे मेले परम चुकाया। बे मोहताज बे अंक अपारा, सचपति जय करने हारा। नानक पूले गुर समझावे, एक दिखावे साच टिकावे। बसंत महला पहला आपे पौरा।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीत।

कर पर सिफत तुम्हारी, तीरत सिमरत पुन दान किछ ला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका करी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिले ता पूरा पाई है।

कृष्ण बिदर कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किछ आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकुर आप रखाई, जे सब साकत करें बकीली, इक रत्ती तिल ना कटाई, जन की उस्तक है राम नामा, दैद सोबा पाई, निंदक साकत ठव ना सके, तिल

नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जल समावे। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुकिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार। बाल्मीकि कह हुआ साध संग, त्रू को मिलया हर निसंग। तेरिया संता जांचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन। रहाओ गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक। विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद। बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार। बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए। प्रहलाद रखी

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह।

अपार कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरणाए। बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लखी सब छाए। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाए। पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रह नाम से आयदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

देव सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देव अर अकूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम।

परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव है कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जय जिस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

रे जिन सकल विकल प्रमुखाते मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुरु का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

कपे त्रुट तुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस्ते

कोट कहरव दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो

तेरो मन मानिया, हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन, तन सुहाग प्यारी, जात बरन कुल सहसा चूका, गुरमत शब्द विचारी। जिस मन माने अभिमान ना।

अंतर रतन पदार्थ हित को दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर धारी। सारंग महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर। मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाये। दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर

सांस वसे मन आए, गुर कृपाल पै तम पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगा।

जब सो प्रसन्न भये प्रभु मेरे, गुरुमुख पर चालाए नानक नाम निरंजन पाया, नाम जपत सुख पाए सारंग महला चौथा, मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखा।

जिन गुरमत नाम पछाने, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जाने। नैनी बिरहों दे

तिल तिल पल पल औद फुल घाटे, बूझ न सके गवार, सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार, संत जना कैसा।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गाओ।

हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन

के पंच शब्द वद पाग मथोरा, तीन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मेल है जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत।

अंतर प्यास चात्र की ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। नाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ। वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। करें सोम पाक हिर

निष्बासुर त्रय त्रय मुख तेरो, नींद पलक नहीं जागियो, हार कजर बस्तर अनक सिगार रे, दिन फिर समय दिख लागियो।

मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत सादा बचन गुरु जो पूरा कहो मैं छीक गांठरी बांदा रहाओ निस्बासुर नक्षत्र विनाशी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा।

धन्यवाद। अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध, ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बाँचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदें तत पछानिया रहाओ। परविरत मार्ग जेता किस होइए, जेता लोग पचारा।

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध।

मन बांचत फल लइए रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पीवड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

गाई रहाओ। अनित जन्म प्रम तो ही आयो, मानस जन्म गुलवाई। गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो, तौ लागो अनठाही। करें बुराई ठगाई दिन रहन, नेफल कर्म कमाही। कान नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

जाति रविदास ठाकुर बन आई, जियो पिंड तन तन साधन का, मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नाते, नानक मिले गुसाई, सारंग महला पन्यवा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, ईत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को अकाल मूर्त है।

पाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ है।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया देह नाव बलिहार।

प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारन महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पए सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाए पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर स्यों मन माना, साध कृपाल दे।

बिसरियो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बसर दीना कोगो पोग निसंगा निरपो पै नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रय अंक समानी रहाओ सूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुर सुजा।

दुख सहामा गोविंद भजन के निरपैवा पारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रे बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

नैनो देखो चलत तमाशा, सबहु दूर सबहु ते नेरे, अगम अगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले, लिख्यो ना चलावे, मता ना करे पचासा, तू मैं साज सवार बिना है, भगत वचल गुण तासा, अंध कूप में दीपक बलियो, गुर हृदय कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेश।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे।

और द्वितीय आकाश बिराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे। सो नानक मैं

कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेट दृष्टाना, जो कहो मुखों सेवक ए बैसी है, सुख नानक अंत न जाना, सारंग महला पंजवा।

लाड लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बार की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल

सुख दाता प्रभ ध्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर

नाम औखद मुखदीनो जाए पया गुर पैर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रह काट सिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेर सारन महला पन्यवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

अपनी इतनी कछु न सारी, अनेक काज अनेक तावरता, पुर्जियो आन जंजारी रहाओ, ज्योस चाड़ के दीसे संगी, पूहा नाही जह भारी, तिन स्यों राच मात हित लायो।

आओ खास सांस पर उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना छोरी पूजा चक्र बर्त नेम कपिया उहा गैल ना छोरी अंध कूप में पतित होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पे।

देवन हार बिसारे अंदुले जो ससरी उदर भरे बह हाथुले साध बिकार बिकार चूठ रस जै जानो तै वीर बातुले कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात न पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो जो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक।

सुख आनंद सहज रस सुन तुहारो नायो रहाओ कृपा निधान सुख के सागर जस सब में जा को छायो।

संगत विनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद, सारंग महला पंजवा मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया, किस गुर कै

रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, सज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

समाए अनद अनद गुण गाया बां पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

आवे राम शरण वडपागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, साकी उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जोरा ते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही, साथ सहज मन पयो।

सतन नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन नेचल हर का नाओ भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाये सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको जाका अंत न पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कह मुख लागे का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे, दिल जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे कुर को लागे, सोई तुरंतर, सोई बसंदर, हर एक

भगत गुण गावत गीजे, होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साधको आचार, चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

पूरन परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल भी ठुले, बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी, आनना दूजी जाए, ज्यो तू राखे तिव ही रहना, तुमरा पेने खाए, साध संगत के बल

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल।

अनेक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

प्रीतम मनमोहन मिल सा दे कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो देख दयाल।

पुजारो नानक नाम रसक बैरागी कुल है समूहा तारो सारंग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

सब त्याए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

लोभ त्यागे गुरु गोपाल पय कृपाल लबद अपनी पाई दिन से परम मोह अंध टूटे माया के बंद पूरन सर्व

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण।

आओ दृष्टो कछ संग ना जाए मान त्याग मोहा के कह हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निधान सगल आस पूरी।

जन मुक्ता। राम भजन चित लावे सारंग महला नावा, मन कर कभू ना हर गुण गायो।

अनपो विसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माइल संगी चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बड़ पागी अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते में केवल आद जुगा दयाला मोहन मोयलिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक कस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एकोडी ठाराओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर्ण

एक शब्द लिवलाई सारंग महलाती जा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरुमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कह शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाए दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल।

ऐका दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थीरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

कौन उपमा दियो कवन बढ़ाई, पूरन पूर रहो सर्व ठाई, पूरन मनमोहन कट कट सोहन। जब खिंचे तब छाई, क्यों ना अरादो मिलकर साधो, करी मोतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किछ दीसे, संग ना कछु जाई, कहो नानक हर हर आर।

ता अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

नाभि वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायन सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजियन।

करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिये परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे साथ आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ते आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरे।

पूर बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपक नहीं मोया मंदी सोए।

ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर सब दीन लिया। सतगुर के पाने जो चले हर से पीर लिया, जम काल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिनको जिन हर मन वस्या सो पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया, एक जीवन को चित गढ़ मंडप सुवारिया। बलवंश कर उपाव माया हिर आनिया, जमकाल निहाले सास आव कटे बेताल।

वस्त पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गनाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया।

न होवई। नाम वसै मन आए, बिन नामे जे होर खाना, चित रोग लगे तन खाए। नानक रस्ता सब चलाना, आपे ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

हर्त से त्यागो संत जनों जो अंत ले चलाए, हर कीत पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरुमुख नाम।

आप छोड़ शरणाए पवै मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रह लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

करो बिनु गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन तन कोर शीतल मन मोरा लालवती गुण गावे बरसतना में।

ऐसा नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मैं समाया।

जिन तन तिरका साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी कई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी बस कना मेरा फिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों हम जिन भगत सुहावी मुक्त पे गुर बरस दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुम्हारा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौड़ न पव जल फेरा अपने पिर हर देख विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत्साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सरद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछे बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंडार महल में बैठे अगम अपार पीकर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुर्ख नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता दे मनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसमें राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

सुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंडीठा कुछ कह न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवरात।

गर्दना फूले दारू लाए, चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल तप में सास, सास दे काया तल पाए, ताके पाछे कोई न खाए, कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंश, दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटे से साचे नाए, मलार महला पहला, दुख महुरा मारन हर नाम।

आप तृष्णा उगने की दंज नगर करे ता बंदा तीर जो वेखा ले त्यों वेखा वीर ना यो तंग जाएगा ना जाएंगे खंग पौने पानी अग्नि का सन बंद नानक कर्म होवे जति।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिया सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पीजा गुरमुख कोई गुरना बूझे जिसनो

एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

अमृत सुख अंतर सदा निभय तेरे आल राव। मन मुक्ता ठंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ नावे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम।

एक बिन मैं और ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द।

इहो हुकुम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहां गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम वखाणे।

हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंबा तर्क विहाय, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम लीलाई, पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वह सह सुवाए, हर रस पी वह रसन रसाए। कोट मदे किसे बुझाए।

रखना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर वह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कल गुराम नाम है, गुरमत अंगन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हा खिन खिन दिल लाए, बिन तुर देखे नींद ना पाए, यो बिछोड़ा सहा ना जाए, सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पू

हर हर प्रभ कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथयानी केदार थाप्यो महसाई काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

कीर्तनानी हर हृदय के कपटी नरमित कपट समाक तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया। जो अंगिन हृदय नाम ध्यावे, सब जन तिना का सफल भया। वो आप करे सृष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया। तुझ आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिस ते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हो मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई, सार संभाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निधान गृह तेरे, मन बाचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा, कार्य सगल अरंभियो करका, ठाकुर का भरोसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे, गृह मंगल सुहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निर पाए, जब प्रेह आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे अनंदा, गुरु कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निध छोड़ आम को पूजे, आत्म का सी हरते। हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमे बहुजोनी, एक न काहू तरते।

करते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे प्रवचित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश पहे मन निर्मल गुण गाए रंग रांगी एहो मन दे किए संत मीता कृपाल पहे बड़ पागी महा सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मलहार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संगराती एहो मैं कीटी ठाई कई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरख सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निध पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ।

मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे।

हुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे।

इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई हो तो संग ना जानो मृग पंखी मीन दीन नीच ए

दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवि जय, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, पार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस की जय, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ।

कार्कियो में स्वामी ट्रंपो में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सांस गिरास अपना खसम त्याय रहा।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। मनार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आत मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कही न जाए। कर कृपा पूरन सुख दाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना।

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सतगुर जेवड़

सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाए वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास, राग मला

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस पाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे अज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भय अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहार।

संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग तन तोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला तन्यवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला तन्यवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभु दैन।

नानक पार उतार मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चकवी ने

छिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काशवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर में को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सर्पन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन साकी सच मत हृदय समाई।

जुड़कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालन हार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जापे, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पैर।

एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालं, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालं, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालं, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर पाथी जाल, अलख न जाचे हृदय समाल, रहाओ एक जी कै जी आखाही, जलत तरती बूढ़ी जल माही, सर्ग जी की ए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फांस पड़ी

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नामे जम दंड सहै मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोक्ष द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने।

तिस जेवड अवर ना कोई आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए।

पाए, हर कृपा ते सतगुरु पाइए, ते तैसे सुवाए, मन मुख परम पुलाया, बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है, पर करे विचार, मुक्त कदे ना हो वई, नौ पाएन मोख द्वार, बिन सतगुरु बंधन ना तुतही, नाम ना लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके, वेदा का अभ्यास

हर सिंह रहा समाये, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुरु की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमक मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्स प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संगे

कंपंजन हर राया आचार्य स्वामी अंतरजामी मिले गुण निध प्यारिया महामंगल सुख उपजे गोविंद गुण नित सारिया मिल संग सोहे देख मोहे पूर्व लिखिया पाया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा माल दे की तुन इको अंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर मिले मन रहसी है ज्यों उठे तरण सिगार सब दिशे हरियावली सर करे सबर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी ठे लाल कमल विगसे सच

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द ना।

गुरु नानक सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंदर तरत विछोड़ चंगो आताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन कुर्बाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्मे बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वरन सबाया ना किस भुख प्यास रज्जा ताया गुरु में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दे लाए आप छपाया।

लाए झड़ी, नानक पाणे चले कंत के, सो माणे सदा रली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपले, इसमें गए हक किसना।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश

गुरमुख पथ सो लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

लाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक

जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार। गुरमुख जिन्नी बुझया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए, गुर के शब्द विचारिये गुण में रह समाए। अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ ना पाए। विण नामे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किसना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मनिए तिख उतरे चढ़े चवगल वन। महला तीजा, बाबीहा जल में तेरा वास है जल ही मैं फिरा है, जल की सार न जानही का तू कूकन पाहे। जल फल चहो दिस वर्षदा खाली को ठाव नाही, एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के नाही। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे। पौड़ी नाथ गति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम के आए तुझे समाया। जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तिने वर्ताया। नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया। दुनिया के सिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, इहो जल सब कै वरसवा वरसै पाए सुवाए।

सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वि परवाहो इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुडमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जानी। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असंग

हंस धाया दूजे पट खोई एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई बिन नावे बाजारिया पिहावल होई कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया और गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कह कहाल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जले हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभ पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे का लिया कोई न सके जमकाल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेता लिया पशु मानस चंप लेते अंदरों का लिया सबो वर्ते सच सच्चे सगर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए मेघ वर्ष दया कर गुड़ी छह बदलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल न पाए। नजर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला टक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही गिणना में तन चार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसै विच्चों जाए विकार पौड़ी।

पद पर आया, कुचल रहे दिन रात शब्द न पाया, तीन जात न पक्ष न कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन शब्द आचार

तीजा गुरुमुख मल्हार राग जो करहे तिन मन तन शीतल होए गुरु शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची पगत है सहजे ही पट होए तन जुग में कोर अंधार है मन मुखरा ना कोए सेवड पागी नानका जिन गुरुमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वर्ष कर दया लोका मन उपजै चाओ।

गुरमुख शब्द समा लिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान त्यान मैल चुकाया, हर पर तीर्थ जान मनुआनाया, शब्द मरे मन मार।

लिखिया पाया। श्लोक महला पहला, कुल्हा देंदे बावले लेंदे वडे निलज, चूहा छड ना मावई तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे।

केते मंग मंग जाहे महला पहला। सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंज सै दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी। अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सबका शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गए पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकदाली बैठाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए।

तिन पौ सागर तरना पौरी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार इक नानो तुद एवे पांगा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राति काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख ना जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुरु बूझ ना पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सरम करम दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडिये जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाम फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला।

दया जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कै सुखदारा इना पर्या।

एक चसे में लख सबको नखे नथिया बक्से तोड़े नख वरना चेहना बारा लेके बाद अलख क्यों कठिए क्यों आखिए जाके सचो

सदा सुख होए महला पहला। अजर जरे तानो कुल बंद, पूजे प्राण होवे फिर कंद। कहां से आया कहां यो जान, जीवत मर्त रह परवान। हुक्मे बूझे तत पछाने, तिहु प्रसाद गुरु ते जाने। होंदा सरी अज्ञानिक जान, ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी। पढ़िए नाम सलाहा होर बुद्धि मिथ्या, बिन सत्य व्यापार जन्म बिरथिया। अंत न पारा वार।

मैं समाया एक पगवा वेश कर परम देह बिन सतगुरु कि न पाया देश दिशंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुरु का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवागोन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सालाना जिन मन सच्चा भाया स्वरूप महला पहला नानक माया।

चलाया, तेरे हाथ निबेड़ तूने मन भाया, फाल चलाए बन कोई ना रखसी, जर जरवाना कन चलिया नचसी, सतगुर बोलत बेड़ सच्चा रखसी, अगन पखे प्रहाड़ अंदिन पक्षी, फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी, करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर में

अर्जन त्रु प्रहलाद अम्बरीक नारद निजय सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे है करी सर्वव्यापक अंतर हरी प्रणवे नाम देव तांची आन सगल भगत।

रंग रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुणी रे, संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी, मिलत न होए आनन। तर तार अपवित्र करमानिय रे, जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए तेह ऊपरे, पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता, नित बनारसी आस पासा। अब बिक्र प्रधान तेह करें।

रही हा पियो कहो रविदास पयो जब देखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नवा चौक दे महला चौथा

अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पद परया, तन तन साध

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रख

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम बहु।

परचय राम रविया कट अंतर। अस्थिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात। हर हर कथा सुनी मिल संगत,

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिनको हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पी।

काम जिस रूप ना रेख वडाम सत्संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास्तित कर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुरु सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम के

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारन सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

पाओ, अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर ध्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूझी बहुरंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, सहु नानक कहो छू।

अज्ञान परम बिन सै दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहो नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बने।

अनेक स्वांग काछे पेख तारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार कानड़ा महला पंजवा तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ जल तरना, अबे दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा महला पन्यवा, साध सरन चरन चित लाया।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुन गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आप होत पूरन।

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग तरन आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद पयंत सांत अमृता रस

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केते ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमते, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरणाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पै कृपाला, मगन पै ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, पूरे काज बुरु कै फेरो रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

विखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाद समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप्ती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, पोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर

निंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

आ पूजा जे हर पावास, माटी की ए पुत्री जोरी, क्या ए कर्म कमास। प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो, सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे, इक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास, जो सब कट प्रभु निवास।

जगत उदाहरण नाम तह तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दरसेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

बरन ना साकू एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तव नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त।

जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन।

कनिक मंदर पाठ सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सै।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जनु दिरे।

पंजवा करियारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा मेला पंजवा करत करत चरच चरच चरचरी योग ध्यान पेख ज्ञान फिरत फिरत

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाने अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम सियावै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मन लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड़ पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवै ता फल गुण पावै गो। जो निंदा दुष्ट करे भगता की, हर नाखस ज्यो पत जावै गो। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावै गो। जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावै गो। जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी।

सब एक समय समावे गो। एको रूप एको बहुरंगी सब एकत बचन चलावे गो। गुरुमुख एको एक पछाता गुरुमुख होए लखावे गो। गुरुमुख जाए मिले निज महली।

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तिस नीड नावे दिख चार चार लिव लावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगर

गो ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावे गो सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावे गो जो अमरीत अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावे गो सतगुर शरण शरण।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये, हर त्याये बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज।

गोविंद गाये नित ध्याये। परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन। गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै। हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सत्संग सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गिया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हउमै ममता नाप होए दुर्मत कड्डै धोए नानक अंधिन गुण उचरै जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या

रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहुविद पांक उपावनी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमति सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेत्यो, तिन जुए जन्म सब हार, गुर तुठे हर चेता।

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे ए आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा, सत संगत हर मेर

हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर पीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वक्त है निकट सब जौला सो बुझे जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला श्लोक महला चौथा सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाज समाए जन

जन नानक इक आधार हर प्रभ इक से गत पट पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड भागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। मैला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन वित्तो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता एक मन मुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर ऊतम हर

सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाय सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने। नानक सो प्रभ मैं मिले हो जीवा सद सुने। पौड़ी जगन्नाथ।

नहीं हर रोल, बड़ पागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्यावो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम चगड़ चबोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौदिया सर संध्या गावार, नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या सिर फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम तिखन, जेकर दूजा देख दे जन नानक कड दिचा।

बिन नहीं कोई, कट कट अंतर रव रहा, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू, लुड लुड दर गए।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बारिक प्रत पारे तुम रे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहा। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत बहुकीनी, एक दिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सदगावे, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरम्पर स्वामी, बहु जपी है थाना।

जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूरख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी सस चंदन जग ससिया, हर जन हर हर हर निव लाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया, कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया, जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुख हो में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभ ताका कहया।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद्ध शुद्ध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीर हीर विदाई है। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कै

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुबद दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तो

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख ज्योत पल

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड तरम राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पुजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जाने।

मन तन अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

नाम बिना नचते नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाय साकत नर अंकारी कहिए बिन नाम त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाय किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगर

ज्यो सूरज किरण रविया सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का दे अमृत पी जय। सात स्वान

साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड़ कभी जाए, पर उपकार बोले बहुगुनिया, मुख संत भगत हर दी जाए। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जाए, सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जाए। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जाए, जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर कवी जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लो चीज है, पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जाए, परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जाए। आते बिलम पल टिल न की जाए, जाए साधु चरण लगी जाए। राम नाम कीर्तन रतन वच, हर साधु पास रखी जाए। जो बचन गुर सत सत कर माने, इस आज्ञा पाठ करी जाए। संतो सुनो सुनो जन भाई।

जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकुन जग तरिए सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तचीजै अज्ञान अंधेर महा पंच बिखड़ा अहंकार पार लग लीजै नानक राम रम रम रम रम राम ते गत कीजै सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरणा नाए पत पूज नाओ तेरा।

सूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए विण ना में पत कब होना होए अवर सियाणत सगली पाज जय बख्शे तै पूरा।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लहे गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोख पास गुरु होए रहाओ गुरु दरियाओ

रत्ता सच नाम तलहियल सो गुर परमल कहिए जाकी वास बनास पत सौर पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाइए गुरमुख नानक सच समाइए गुरमुख निज पद पाइए प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हों तै तै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कामत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नान करवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो किछ करे सोई पर होए बा अवर न करना जाए रहा जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर परियत है तैसो ही एव खेल खत्म का ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी जिसकी आशा तिस ही सौंप के एहो रहा निर्वाण जिससे होआ सोई कर मान्या नानक गिरही उदासी सो करवाण प्रभाती महला पहला दिष्ट विकारी बंधन बांधे हौ तिस कै बल जाई पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाय बोलो सच नाम करतार फुन बहुर ना आवन वा।

करवाण ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखा।

जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाए। प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा, आशा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए। जागस जीवन जागन हारा, सुख सागर अमृत भंडारा रहा, कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर कर्मी मिले वडाई। दिन दिन आवे तिल तिल चीजे माया मोह।

कुमारी त्रिपुत तरंग तत विचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर दीठा जिन चाख्या पूरा पग होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मान्या और न रंगन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल दिगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुरु प्रसाद प्रभ पाया अत रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसम रसाए राते रब रहा प्रभ सोई परवाती महला पहला बारह में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया

मनमत विचर दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने, अंग दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने, सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराचित काल नसे, प्रभाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहा करे बपुरा जन बरते, गुरमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना, रहाओ, गुर उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आत पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, सात शब्द मन मानिया, राग प्रभाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख बिरला कोई बूझे, सब दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहाओ, हम दिन पवित करो दिन राती, इस जुग का लाहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई, प्रभाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी, आपे लेहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर कृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पायन,

कोई गुर के सबर कमल पर गासिया सौ में गुरमत खोई सब नाम एक को सच वरते बिरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांच बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषन से जो किछ करे सो नरक पड़े एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक से उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजा।

मिल हर हर नाम बखान, कित बिद क्यों पाये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर बान। सत संगत में हर हर वस्या, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन गान। प्रवासी महला चौथा, उगवे सूर गुरमुखर बोले, सब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा। गुर पद चारे हम बाल, रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी। मुर्फा के माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो। ऋण बादे बहु विदबाल, सत संगत मिल मत बुद पाई। हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना। गुर की ये शब्द निहाल, हम बारिक गुर अगम गुसाई। गुर कर कृपा प्रतपाल, दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ। गुरु नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। सिख खिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रस प्रतीक। गावत सुनत बहु पे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक। मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस जीक, रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी। तिना मस्तक उजल टीक, हर जन शोभा सब जग ऊपर। ज्यो विच उडवा सस पीक, जिन हर हृदय नाम नौस्यो। तिन सब कारज फीक, जैसे सिगार करे देह मानुख। नाम बिना नकटे नकीक, कट कट गुनैया रमत राम राय। सब वर्ते सब मैं एक, जन नानक को हर कृपा धारी। गुर बचन ते आयो करी नीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ धारी, मुख हर हर नाम हम कहे। पतित पावन हर नाम ध्यायो, सब किलबिख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, पाया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो। कर मंदर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उद्याने। ते साकत मूड मुहे, जो मृग ना भी बसे बास बचना। प्रम प्रम्यो चार गहे, तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक को गुर हाथ सिर करयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर, हर जप्यो हर प्रभु वडपा। सतगुरु बचन सुखाने हीरे, हर तारी हर प्रभु कृपा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर दान दियो गुरपूरे, हर नामा मन तन बसा। रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जप शोभा गुरमुख करपफा। हलत पलत जन पै सुहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा। अनपौ हर हर हर लिव लागी, हर उर्धार्यो गुर निमखफा। कोट कोट के दोष सब जन के, हर दूर किए एक पलफा। तुमरे जन तुम ही ते जाने, तब जान्यो जन से मुखा। हर हर आप करयो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती मैला चौथा, गुर सत गुर नाम दृढ़।

जीवे हर जतबा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा दिख दुख दे बां दे कदबा जप मन राम नाम अर भांबा उपजंप उपाय न पाये कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रसपिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिख्या नित लोभ लुभाने पुत कलत मोह लुभबा तिन पग संत न सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम सरनवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा सत्ता पहला प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ न जान सुन मन गुरुमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विपास इको ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा तरत बर्तन को पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोगते रहे निरारा का तू पावे प्राण पते रहाओ काचड़ पोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटंग सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत तहां सखाई जय कोई न होवे कोट अपराध इक खिन में धोवे बात करे नहीं पछोतावे एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे किर्त संजोगी पाया भाल साध संगत में बसे गोपाल गुरमिल आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मुरार करवाती महला तन्यवा प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा नाम तेरा जन के पंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यार तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा जो जन राता प्रभ के रंग तिन सुख पाया प्रभ के संग जिस रस राया सोई जाने तेक तेक मन में हैराने सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा के हृदय वस्या प्रभ सोए सोई नेचर आवे न जाए हम दिन प्रभ के हर गुण गाए ताको करो सगल नमस्कार जाके मन पूरन निरंकार कर कृपा मोय ठाकुर देवा नानक उदरे जन की सेवा प्रभाती महला पंजवा गुण गावत मन होए आनंद हाथ पैर सिमरो भगवंत जाके सिमरन कलमल जाहे इस गुर की हम चरनी पा

सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा जिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया सड़क पलक जिन गुरे सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया महामुक्ते किया ज्ञानी गुर पूरे की अकथ कहानी पार ब्रह्म नानक गुरुदेव वडे पाग पाये हर सेव प्रभाती महला संयवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुख मिटाया हम बारिक शरण प्रभ दयाल अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव पाप पाप बिन से किन भीतर तय कृपाल गुसाई सास सास पार गम आरादी अपने सतगुरु के बल जाई अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाये लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ध्याई है आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिकसग नासे सच नाम गुर दीनी रासे प्रभ की दरगह शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसे।

कलेस। जो तिस पावे सो फल होस, तिस गुर को हो सब बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम दियाई। ऐसा गुर पाए वडवागी, जिस मिलते राम लिवलागी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी। आठ पैर अपनी लिवलाए, जन नानक।

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सच साहा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो।

हर नाम जपते किल विक्षम लाते, संत साजन सुख भय सुहेले, गुरपुर प्रभ स्यों ले मेले, जन्म मरण दुख फाहा काटिया, कहु नानक गुर पर्दा टाकिया। प्रभाती महला पंजवा।

आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्य सगला रास्तिया रहा। चरण कमल गुर के मन बूते दुख दर्द प्रभु दिन से चूते नित उठ

गुर पूरा पाये वडबागे, दर्शन को जाये कुर्बान। रहाओ किलगित में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आपरगास, चरण कमल मन माय निवास। जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ। जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्मता के आचार। गुण गावे नित नित नित नवे, लख 84 जोन न भवे।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोग मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख विदार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए समाया। आवागौण तुद आप रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्बाणी, बिन सतगुर के ते कोई न जानी। सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वित्तों कुर्बानी। पाओ भगत गुरमति पाए, हो मैं विच्चों सबक जलाए।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अव

ब्रज व्यास पढ़ाया, तिनकर जग अथाने काए, कीर्तना चले चलाया, गणत न गनी हुकम पछाना, बोली पाए सुवाए, जो किस वर्ते तुरे सवाही, सब तेरी वडियाई, गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे, सदा रहे शरणाई, मनमुख मुग्ध आगे चेते नाही, दुख लागे पछताई।

अंकर जूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

व्यापार हर जस कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि में पूजा हर रस चाख्या तो मन तीजा प्रणवत नानक।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबल चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे

हर मंदिर में नाम निदान है, नाबू जय मुक्त गवार, गुर प्रसादी सीनिया हर राखिया उर्धार, गुर की बाणी गुर ते जाती, जो शब्द रते रंग लाए, पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई, पारस पोते है कंचन भया, कीमत कहीं ना जाए। हर मंदिर में हर वसे, सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए, सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा, तय पाल जागे सुजन जागरण करें, होमे मेल उतार। सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ। गुरमुख सहज तुन उपजे, दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए। गुरमति मुख सोने, हर राख्या उधार, एथे ओथे सुख गणा।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अस्पदिया इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग अनंत स्यों जुगता उर्ज परयो मन मीठ मो

अंकर कपट सिरे देताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब किस जाने जिन तू किया कुंवर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया दे के नस्ता देश छोड़ पर देश ढाया पंच चंडाल ना ले ले आया कान पर आए हिराए तू का कर कर मांगे तृप्तावन से तू का बनता छोड़ बद नजर पर नारी वेश ना पाये महा दुखियारी बोले ना ही हुए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अंते रहता दुख देही सहता हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौरा ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग का दर्शन पाईए आप तरह सब कुटुंब तराईए रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम तिलक सब काते धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख पाया।

गांडा। जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल। होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीरथ स्नान करीजा, चरण कमल निमख हृदय धारे, गोविंद जपते सब।

सर्व कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, नीत साजन भरवासा तेरा, कर गय लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास। विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरुषोत्तम काची अवगत बाणी नामा कह जब जीवन पाया हृदय अलस बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया।

रतन लाल नामा साच समायला करभासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो पर

हृद अंतर कर तलकाती, ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा, कल भगवत बंद चिरामन, क्रूर दुष्ट रता निस्वादन रहाओ, नित प्रत स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं, हृदय चुरी संध्यानी, पर दर्भ हिरन की बानी, सिलपू जस चक्र गणेशं, निस्जाग सुपगत परवेशं, पग नाच सुचित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं, मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूर कंठ रुद्राथं, रे लंपट कृष्ण अवाखं।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डाल।

भी हाथ है। जय जावंती महला नामा। रे मन कौन गत होए है तेरी, यह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखिया

कनिता विनोद सुत कतंच भात मेट हित बंधव कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे नृप मोहन अलप बुद्धन रतंत बनता विनोद साहन जो बन बे कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत बस्तर।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी कृत पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

महेबते विपरीत बुद्धिं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

तदेन चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अपजसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए गुरु मंत्र ने।

مٹ کاٹت انو مرم نہ جانی ہے گاہک دنی اپار سو تک پٹھانی ہے جس تیست

जाए। जप तप संजम हरक सुख मान महत अर गर्बे, मूसन निमक के प्रेम पर वार वार देव सरबे। मूसन

फिर अंबर कनहर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले परबात जो नर

काल पाछे कछु न होए बात जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना कर।

0: कीचड़ आटा गिर परया किछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ।
1: कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे।

पागत रखे ता राम भजे ना ता बिनती बात। कबीर के सो कुकिया ना सोए सारे रा

श्री राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले दो महंगे मोल कभी राम नाम जाने नहीं।

जीवन के पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल पलंग। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लीलात, मुकुट पदार्थ यह खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे भगतन।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे। हर्ज उर्ज के खत्म हुआ चारों वेदों माहे। हर है खांड वेद में।

खल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम ओइदा राती वड्डियां कुक कुक उठन पास सिज तिना दा जीरिया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया फेरा जलै।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियार खरीदा इतना आटा।

हंस न कोदरा खाए, चल चल गईया पंखिया गिनी वसाए ताले, फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कले। फरीदा इत सिराने पोए सवन कीड़ा लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाची अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टूटी नागर लाजे, जो सज्जन को

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इती मामले सहाना इती दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

नौबत वजी सुबह क्यों चलन का करसाज फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंक न लाज। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे तार रब रजाए वैं चिदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर वात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कप

रब खजूरी पत्तियां माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उमर हथ पवन फरीदा तन सुखा पिंजर किया तलियां खूंडे काज अजय सुरज न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा करंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूड ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमानी सड करे निकरिया कर आ

अमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे जो दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नो सब सोजी आई इक फिर देवे करवा।

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुमताज।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हैं कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को तो तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

सिर तल उपर पाओ। मैं जानिया वडहंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बपुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बबुला जाको नदर करे, जो किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी है करो फाही वाल पचास, तन लहरी गड किया सच्चे तेरी आस। कमल को अखर कमल गुण कमल को मणिया मंत, कमल को वे सोहा करी जित वस आवे कंत। निहन को अखर खन गुण जो बामणिया मंत।

करब रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापक देखे जगत जाने कौन तेरी गते।

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो हर आन नई समसर उजियारो निर्मर कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक दी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसयो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरखे, पूरा तन सुनिए। अमृत

बल बंट छप करत उपाया, देखत सुनत प्रभ अंतर जानी, सील धर्म दया सुचना।

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदारन सो चित चेत अचेत जान सतसंगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

ज्ञान के काट भरम भरी। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नाम के जगे जानत सुपना। देहे न देहे

एदिन करते सोध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचने मां करम धर्म संजन सुचने मां चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अचकावर बौगिंद जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांगत शिव

छंद मुनि सरत रसक रसक ठाकुर गुण गावे। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरणि गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस दे

तब कल सुदस गाओ गुरु नानक राज जोग बिन मानियो। गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मा दत्त स्मरंथ गुणाम। गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत।

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

सतसंगत सहज सारे जागी ले गुर बिचारे निमरे भूत सदीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तोड़ियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध।

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञाने जाने अकलगत गुरु परवाने जाकी दृष्ट अकल ठाने बिमल बुद्ध सुठाने पैर शील सनाओ सकत बिदार कहो कीरत कल सहारी सपद दीप मझारे लेना जगत गुरु परस मुरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अभ पाप परासन सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रित पालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलके सत लागे सो कह करे गुरु जगत फिरन श्रीअंगरो राज जोग लेना करें।

गरल नाश कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिगास जागयो अलग पल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रहो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अब सच मजन हो सच तीर्थ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने दर्शन परसिए गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सब

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया। चित नाम लागते तुस धयावे जतन कपी सर मन वसया। सोई नाम सिमर गंगे उतामे चरण चित अमृत रसया। चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगत उदरिया। सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया। नाम चित संसार किरण रहो सुरतर साथे उत्तर दक्षिण पूर्व देश पश्चिम जस भाके। जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व से दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरण गुर अमरदास तय पायो। नाम धयावे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे। जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे। नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार। सोई नाम पदार्थ अमर गुरु तुस दियो करतार। सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया। जिस धीरज धुर धवल भुजा सहित बैकुंठ बीना परचे संत प्यार जय कर तारे संजोग। सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की को जोग। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुरु सेवे जिस पसाए।

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो। मस्तक निशान

चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल्य। हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे। जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे।

करवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुरु अमर निते ते नर

के नर उठत बिठते सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद मदते सत्यत ते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समरे तय पढ़ो एक मन धर्यो एक कर एक।

सुपन एक पर तख एक एक तीस एक अर पंज सिदे तीस नीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जा।

है जालपा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद ने।

तात गुण कवण वखाणो, जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोल तो विधाते निर्मयो, सब संगत कुल उधर है। गुरु अमरदास कीरत कहे, त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कलाधार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जैसे जैसे भरपूर सबक दीपक।

जप तप सत संतोष तिथ दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाय भरपूर हृदय उचरे कर तारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरे गुण कर तारे उचरे गुरु अम

जब गुरु देखे सुगदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो, गुरु अमरदास कारण करण जिम तो रखे क्यों रहो। दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान तत्सव तत्।

सुनाओ ज्ञान है आसन करो धर्म धन कर गयो भगत शील है सर लड़ो धन निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग लो काम क्रोध लोभ मोह अपत

सतगुरु सेव परम पद पायो अबनासे अबगत दयायो। किस भूखे दारिद्र न चमते कल सहारता।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अन भय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण ठकुन हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते, आत्म रंग चलूल भया। जागा मन कवल सहज परगासा, अभय निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेवे लागे, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे। कब कल ठकुर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारियो, दुख भंजन आ

गुरुदिन को सौ तर सन मान अभमान निवारे। जिनको गुरु सौ पर सन सबद लग

सतगुरु नाम एक निव मन जपे दृष्टि जन दुख पास पौखत हो जियो तारण करण सिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृद विचारे काम क्रोध खोए जियो जीवन शब्द दाता अगम ज्ञान।

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अंतरे जाके दे

पाँव तह नीर सर अवर अनल अनाद कियो। सखण खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत

कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस तै मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाए परे रे। जोहर बुध हृद सिद चाहती, गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास प्यो सेवन की, बंसत सिद को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोरसे, बासन सुजो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी, समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बन

ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर। सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख।

गुरु मिलत मुन जन रे तरे नार दाद सन काद हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस।

प्रहलाद भगत उदयन हाथ कमल माथे पर धरियन अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध।

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

जग जन्म मरण भगाए आई हिए परतीत ही आई जिन जन के

का ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलो का ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलग

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच

लेनियो भले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुवर नह करंत बजी डंक चढ़े दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बरा

सच जान मंत्र एह नित बासुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोद लोभ मोह जन जन संसार धो हमें का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार सजनिकार मन

नहीं पाता। गुरुमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत्संगत सेठी मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाथ।

गुर समरथ गए करिया धूप बुध समत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे साज तू और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायतमन सुबर सदा सब विद रतनागर, संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

तेज पुंचय लोक प्रगासे, देखत दर्श भटत भ्रम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा अत लुभते, अल्प मोजो कुसुम सुबासे। विद्यमान गुर आप।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन कर सकियो ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ध्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन, मन धन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो। गुरु अमरदास।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल धन मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभु पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।

ज्यों अंगद अंग संग नानक गुर सिं गुरु अमरदास कै गुरु रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास सांते संगत सगन भा

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, कीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो।

गुर पूरा पायो बड़ भागी निवलागी दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल सहार तुए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जग

बौरस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए। क्यों बाणी पदक सलांदे हर नामे चित लाए, मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। तै पगती पगत बहु लोच दे।

चुप पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया चित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे ता हर वस लगे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखै सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुख।

बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए। नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए, मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह।

कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए। सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आए। नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए। आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए। हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए। नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास। ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विश्वास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास। हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चाले सतगुरु भाए, सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नाम

सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार, एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जे सो लोचे कोई। हर का नाव अत वड ऊंचा, ऊंची हु ऊंचा होई, अपड़ कोई न सके जे सो लोचे कोई। मुख संजम हच्छा ना हो वही, कर पेख पवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई, अंतर आय वसे गुर शब्द विचार है कोई। नानक शब्द मरे मन मानिए, साची साची सोए। माया मोह दुख सागर है, बिख दुत्तर तरे आना जाए। मेरा मेरा कर दे पच मोए, हों मैं करत विहाय। मन मुखा उरवार न पार है, आद विच रहे लपटाए। जो तुर लिखिया सो कमावना, करना कछु न जाए। गुरमति ज्ञान रतन मन वसै, सब देखिया ब्रह्म सुवाए। नानक सतगुरु बोझै वड पागी, चढ़े ते पौजल पार लंगाए। बिन सतगुरु दाता को नहीं, जो हर नाम दे आधार। गुर कृपा ते नाव मन वसै, सदा रहे उद्धार। तिसना बुझै तिपत होए, हर कै नाए प्यार। नानक गुरमुख पाईए, हर अपनी कृपा धार। बिन शब्द जगत बरलिया, कहना कछु न जाए। हर रखे से उबरे, शब्द रहे लिव लाए। नानक करता सब कित जानदा, जिन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण। बिख माया मोह न मिटई, विच होमे आवन जान। सतगुरु मिले मल उतरी, हर जपिया पुरख सुजान। जिना हर हर प्रभ सेविया, जन नानक सतगुरु बाण। माया मोह बहु चित्व दे, बहु आशा लोभ विकार। मन मुख अस्थिर नाथिय, मर बिनस जाए खिनवार। वड पाग होवे सतगुरु मिले, होमे तजै विकार। हर नामा जब सुख पाया, जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार, माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार। तब नर्क पाजा गया सिर डंड लगा भो पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे, हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान, ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान, तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान, मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही, विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही, गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए, ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए, मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेले।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह।

जाल हर मंदिर वक्त अनेक है नव नाम समाल तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल वड पागी गढ़ मंदिर खोजिया हर हृदय पाया नाल मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान किलविक पाप सब कटिए हों में चुके गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुके सहज उपजे चुके कूक पुकार नानक गुरमुख सांत हो।

मन लहर जाए, चारे कुंडा चोक वरसदा, बूंद पवे सह चवाए, जल ही ते सब उपजे, बिन जल प्यास ना जाए, नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागे आए, बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए, आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा, तिसना भुख सब जाए, फूक पुकार न हो वही, ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी, सच्चे नाम समाए, तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए, बाबी हे तन मन सुख होए, जा तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे, धरती शोभा पाए, अन दिन लोक भगत करे, गुर कह शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए, हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पै का सह सिगार करो सच रहो लिव लाए, नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए, बाबी हा सगली धरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाई है चूके भूख प्यास, जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास, नानक कट कट एको वरतदा शब्द करे प्रगास, नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए, हर बुठा मन तन सब पर फड़े, सब जग हरियावल होए, सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए, नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए, नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए, हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए, वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लिये किस, नाव लिये परमेश्वर है पन्नन करण समरथ, हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण, साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार, जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान, आप छोड़े ता सो मिले सच्चा यो विचार, हों मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार, वन त्रिण त्रिभवन तुझे त्याईदा अन दिन सदा विहान, बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार, नदर करे जे आपनी ता आपे लहे सवार, नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान, जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस, नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कह उपदेश, चारे कुंडा जे पवे वेद पढ़े जुग चार, नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार, नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित, मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित, गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित, जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित, पुलिया आप समझा।

बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रह आनंद नानक सह समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबहू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम प्यार सो आप पहलाया कर्म कर, नानक लेहु मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर, गुरमुख हसे गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे, गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार, तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मेले सृजनहार, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार, सतगुर की सेवा लगिया पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए, दरगह लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए, गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए, हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए, नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लहे मिलाए, मन मुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए, अंतरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए, अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए, हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए, जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल, जिना एक मन एक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हौ मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए, गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए, मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगह होए कुवार, सब ना रागा विचो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही न जाए, रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म न बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए, सब किस तिसे होया ज्यो तिसे धीर जाए, सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए, गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुर दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मन मुख पुख न जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए, अन दिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण न चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर शरणाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुर भाए, सतसंगत सतगुर सेवदे हर मेले गुर मेलाए,
यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंघाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुर सिखा नो सावास है हर तुठा मेल मिलाए गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वरते करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हौ मैं रोग परम पूले हौ मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिनस रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

गुर कै शब्द अराधिय नाम रंग बैराग जीते पंच बैराया नानक सफल मारू इह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जनम जिनकी तो सो विसरे थोरठ थोरस पीजिए कभू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मती उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कछ तिस दे वस दूजी नाहीं जाए नानक सुख आनंद भय सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय नाम त्याय साजना जन्म

نانک اے بد ہر پجو اک من ہوئے اک چت تیرت برت آ

सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक उभारा, खौखट औ पौरा नद गाये, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल पंचनार।

गुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा

पछताई। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की।

दरियाओ कुदरत कमण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ।

असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खा।

अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए।

एक वार, जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह तो पै नावे कै रंग, पुन्नी पापी आखन ना।

तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाया पंडती

कोई जां करता सिर ठीक कहो साजी आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कही।

ਪੁਰਾਨ ਆਖ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖ ਬਰਮੇ ਆਖ ਇੰਦ ਆਖ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖ ਈਸਰ।

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सू

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग बजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चलावे जिव होवे।

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इत्थै नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इत्थै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै

आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल कित्तै खंड मंडल वर भंड।

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब को।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया, तुद मिन सिद्धी किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया।

राज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरना।

मांस खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत, इत हर रस पाया,

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सत

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन ना

ज्यों हुआ साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेस, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विसे चसियां कड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल, रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तुह कहो, सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक, पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, किस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन बड्डाही कर दंडौत पुन बड्डाही रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हों मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुण।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाऊ नीर चंगे आईया सत परमल तनवा।

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर

आऊ कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नानक सच्चा पातशाह।

रहाउ। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जा पत लेख ना पवे सभा पूज खुआर, जिनको सतगुरु थापे।

रहाउ। प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम। गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास, श्री राग महला पहला आव भैने गल मिले। अंक सहेलड़िया मिलके करह कहानियां, समरथ कंत किया साचे साहिब सब गुण औगण सब असहा। करता सब को तेरे जोर एक शब्द बीचारिये, जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी

सुख होय जग सुपना बाजी बनी खिन मह खेल खिलाए संजोगी मिल एक से वे जोगी उठ जाए जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महल पहला धात मिले फुन धात कौ सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जप एक पाए भाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिविद कर्म कमाई है आस अंदेसा होए क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले सुख होए निज कार महल पछाणिए नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस नानक देख दिखाइए हौस।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई मर

दूर जिसते उपजै तिसते बिनसै घट घट सच भरपूर आपे मेल मलावही साचै महल हदूर साहे साहे तुझ संभला कदे ना वसार्यों ज्यों ज्यों साहब मन वसै गुरमुख अमृत पियों मन तन तेरा तू धनी गर्भ निवार समेऊ जिन एहो जगत उपाया त्रिभवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार घट घट जोत निरंतरी।

नाई है मुख हर नाम निवास जह देखा तह रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रिहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए ज्ञान महारस भोग।

गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग। काया कामन जे करी भोगे भोगण हार। इस स्यों नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया। गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास।

मन मानक निर्मूल है। राम नाम पत पाई मिल सत संगत हर पाई है। गुरमुख हर लिव लाई आप गया सुख पाया। मिल सल लै सलन समाई जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाई। जिस सत गुरु पुरख ना भेटियो सो भौ जल।

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर

सुख होय, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होय, ठाही पाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोय, खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्स ना होय, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोय, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोय, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो तल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया

साहिब राव रहे भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल प्रण

बीज कर्मा करो सलल अपाउ सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इं पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माए।

दस अठार में अपरम प्रभु चीन्ह कह नानक इव एक तार है। श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दों कार सच।

की शोभा। इत विधि जन्म गवाया रहाउ, ऐब तन चिकड़ो एहो मन मींड को। कमल की सार नहीं मूल पाई, पौर उस्ताद नित भाखिया

कर एक त्याया तीह कर रखी पांच कर साथी नौ शैतान मत कट जाई नानक आखे राहे पै चलना माल धन कित कु संजियाही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारू आब खाक जिन बंद रहाई।

हैं, को रह ना भरिए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजनहारू, पांच वक्त निवा

असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजो घटे घट, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगाह परवान, श्री राग महला पह

आपे वेखै सुने आपे ही कुदरत करे जहानू जो तिस भावै नानका हुक्म सोई परवानू श्री राग महला पहला घर चौथा कीता कहा करे मन मान देवन हारे कै हाथ दान भावै दे ना दे सोए कीते कै कहे क्या होए आपे सच भावै तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेही तात तेहा तिन नाओ फुल पाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज

मन अंतर हर रस राव रहिया, चूका मन अभमान हृदय कमल पर गासिया, लागा सहज त्यान मन निर्मल हर राव रहिया, पाया दरगह मान सतगुर सेवने अपना, ते विरले संसार हम मैं ममता मार कै, हर राखिया उरतार हों तिनकै बलिहार न, जिन्ना नामे लगा प्यार ते सुखिये चहु जुगी, जिन्ना नाम अखुट अपार, गुर मिले नाम पाईए चूकै मोह प्यास, हर सेती मन रव रहिया, घर ही माहे उदास, जिन्ना हर का साद आया हों तिन बलिहार जास, नानक नदरी पाईए सच नाम गुणतास, श्री राग महला तीजा बहु भेख कर परमाईए, मन हृदय कपट कुमार।

आस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरियां भोग करहै नव खंड राज कमाहे बिन सत गुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद्ध फिरै ओना तिल ना कमाए।

ब्राह्मणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ह तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

पार्स परसी है पार्स हुई ज्योति ज्योत सुमाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई मन पुखा पुखा मत कर है मत तू कर है पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार निर्भ

से निर्मले हों सद बनिहारे जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर

समाए तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु पाई कुल उधार है अपना धन जनेंदी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाई जिन्नी गुरमुख नाम ते आया विचो हो आप गवाए वे अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूछ कर है व्यापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या कर है गुरमुख नाम त्याय रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राख है उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हो मैं विचो मार तन गुरमुख सो

विचार गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार श्री राग महला तीजा मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए शब्द ना चीने सदा दुख हर दरगह पत खोए हम मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए मेरे मन अहनस पूर रही नित आसा सतगुर सेव मोह परजले कर ही माहे उदासा रहाउ गुरमुख कर्म कमावे बिगसे हर बैराग आनंद अन दिन भगत करे दिन राती हों मैं मारनी चंद वड्डे भाग सत संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए अंतर लाग न तामस मूले विचों आप गवाई नाम निधान सतगुरु दिखालिया हर रस पिया अगाए जिन किने पाया साध संगती पूरे भाग बैराग मन मुख फिर है ना जान है सतगुर हम मैं अंदर लाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभाली है गुरमुख पावे कोय नाम निधान अखुट है वड भाग प्राप्त होए मेरे मन तज निंदा हों मैं अहंकार हर जीव सदा त्याए तू गुरमुख एक अंकार रहाउ गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी बीचार हलत पलत सुख पाएंदे जप जप हृदय मुरार कर ही विच महल पाया गुर शब्दी बीचार सतगुरु तेजो मोह फेर है मथे तिन काले अन दिन दुख कमाव दे नित जो हे जम जाले सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले सबना का दाता एक है आपे बख्श करे कहना किशु ना जावई जिस पावे तिस दे नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए श्री राग महला तीजा सच्चा साहिब सेवी है सच वडियाई दे गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे।

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ। मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ। बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ। गुरमती घट चानना

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिद्दू पाइए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुखे अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत गो

तव ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाय सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाय जो सतगुर की शरणागति हौ तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई।

संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए रहाउ। गुरमुख सदा सुहागणी, पिर राखिया उर तार, मिठा बोलह निव चलह सेजै रवे पतार। शोभावंती सुहागणी, जिन गुर का हित अपार, पूरे भाग सतगुर मिले, जा भागै का उदौ होए। अंतर हो दुख भ्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर के पाणे जो चले, दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावे कोई, जिन्ना प्राप्त तिन पिया, हों मैं विचों खोए। नानक गुरमुख नाम ते आई है, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जां पिर जाने अपना, तन मन अगे धरे। सुहागणी कर्म कमावंदियां, सेई कर्म करे, सहजे साच मिलावड़ा, साच वडाई दे। भाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोई रहाऊ।

दे, गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे, जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया, बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए, पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए, आपे दे ता पाई है

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

हाथ संभाल है छड़ी ना कितै उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती दे सजाए नानक नाम लगे से उभरे हम

सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज वेकार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख उजले तित साच दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हों सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए नामै ही ते सुख पाई है सच्चै शब्द सुहाए।

मन तन शीतल साच सियो सास न बिरथा कोई मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत

अगली मनवा रज्जा सहज सुभाय गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हौ मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे।

तिना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गाव है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर स्यों रह समाय रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुपाय गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस।

सुतियां रहन विहाई एक अपने भाणे कढ लयन आपी लयन मलाई आपी ही आप मन वसिया माया मोह चुकाई आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाई सबना का दाता एक है भुलियां ले समझाई एक आपे आप खुआयन दूजे छड्डियन।

भाई अनदिन रावह फिरे अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतिया सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वर पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सलाह ने अपना तिनकै हों सद बल।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होई। श्री राग महला तीजा, जग होमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल होमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाओ मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हउ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहारे जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिलै घर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिलै मलाए मेरे सतगुरा मैं तो

पुर मान है। गुर सतगुर करे सबास, हौ गुर सालाहे न रजू। मैं मेले हर प्रभ पास, सतगुरु नो सब को लोचदा। जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी। भागहीन बह रोए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया। तुर लिखिया ना मेटै कोए, आपे सतगुरे आप हर। आपे मेल मलाए, आप दया कर मेल सी। गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है। नानक जल जल है समाए, श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिले रस खाए। जाए पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी, हो मल मल धुआ तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है। दुख कड्ढे हो मैं मार रहाओ, गुरमुखियां सुहागणी। तिन दया पई मन आए, सतगुर वचन रतन है। जो मन्ने सो हर रस खाए, से वड भागी वड जानी है। जिन हर रस खादा गुर पाए, एहो हर रस वण तिन सबत है। भागहीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्लै ना पवे। मन मुख रहे बिललाए, ओए सतगुर आगे ना निमहै। ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है। आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी। गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया। नानक हर वस्या मन सोए, श्री राग महला चौथा। दिनस चढ़ै फिर आथवे, रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए। गुण मिठा माया पसरिया, मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है। अंत बेली कोए ना होए रहाओ, गुरमत हर लिव उबरे। अलिपत रहे सरनाए, उन्नी चलन सदा निहालिया। हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दरगाह मनी है। हर आप लए गल लाए, गुरमुखा नू पंथ प्रगटा। दर ठाक ना कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन। नाम रहन लिव लाए, अनहद धुनी दर वज दे। दर सच्चै सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया। तिन्ना सब को कह सबास, तिनकी संगत दे प्रभ। मैं जाचक की अरदास, नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा। जिन अंतर नाम परगास, श्री राग महला पंजवां कर पहला। क्या तू रत्ता देख कै, पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह, मान है रंग अपार। बहुत करह परमायसी, वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई, मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए, गुर प्रसादी पाई है। कर्म प्राप्त होए रहाओ, कपड़ भोग लपटाया। सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहु रंगे। किए रथ अथाक, किस ही चेतना पावही। बिसरिया सब साक, सिरजनहार पुलाया। विण नावै ना पाक, लेंदा बद दुआए तू। माया करह एकत, जिसनो तू पतिया एंदा। सो सन तुझै अनित, अहंकार करह अहंकारिया। व्यापिया मन की मत, इन प्रभ आप भुलाया। ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया। इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है। क्या मानस हों मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे।
दर फेर ना पावे कोई। नानक रत्ता रंग हर सब जग मह चानण होय। श्री राग महला पंजवां मन बलास बहु रंग घना। दृष्ट भूल खुशियां छत्र धार बादशाहियां। विच सहसे परियां भाई रे सुख साध संग पाया। लिखिया लेख तिन पुरख बधाते दुख सहसा मिट गया रहाव। जेते थान थनंतरा केते भाव आया। तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया। हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अफरिया। सब को वसगत कर लयोन बिन नावै खाक रलिया। कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया। ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया। श्री राग महला पंजवां पलके उठ पपोलिया। बिन बुझे मुगद अजान सो प्रव चेतना आयो। छूटैगी बेबान सतगुर सेती चित लाए। सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाह लैन। लगा कितक फकड़ी सब मुकदी चली रैन। रहाउ कुदम करे पस पंखी।

सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना किसकी चिंता नाही हाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा।

साधु संग मसकते टूठै पावा देव सब किस वसगत साहिब आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार न मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इक ससियो मन मानिया ता हुआ निहचल चीत सच खाना।

एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो है माथ मेरे मन एक स्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार बाहा पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा घर तहां जिथे मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवा सोई त्याई है जीअड़े सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह सब सियाणपा छड़ कै गुर की चरणी पाह मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ जिसकी सरनी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला टटिए जम की फास सुख दाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास बहुतो बहुत बखानी है ऊचो ऊचा थाओ वरना चिहना बाहरा कीमत कह ना सकाओ नानक को प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाओ श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी किस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै होमै ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै जिन सब किस वस कीता कर इको बाहर इको थान तनंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए तिन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान सनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए सबना दाता एक है दूजा नाही कोय तिस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट भई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आई अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाई मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाए गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होए गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान
कर कृपा प्रभ अपनी, जपियै अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटियै, लागै सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरनाई पाए, हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए रहाओ, कीमत कहन ना जाइय, सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति, सच्चा शब्द वसाह, कर सेवा सुख सागर है, सिर शाह पातशाह, चरण कमल का आसरा, दूजा नाही थाओ, मैं धर तेरी पार ब्रह्म, तेरे तान रहाओ, नीमाणिया प्रभ मान तू, तेरे संग समाओ, हर जपियै आराधियै, आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे, कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन, प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा, प्रीत लगी तिस सच सियो, मरे ना आवे जाय, ना वे छोड़िया विछड़ै, सब मह रहिया समाय, दीन दर्द दुख भंजना, सेवक कै सत पाय, अचरज रूप निरंजनो, गुर मेलाया माय, भाई रे मीत करहो प्रभ सोय, माया मोह प्रीत त्रिग, सुखी ना दिसै कोय रहाउ, दाना दाता सीलवंत, निर्मल रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा, ऊंचा वड्डा अपार, बालक बिरध ना जानिया, निश्चल तिस दरबार, जो मंगिया सोई पाईय, निधारा आधार, जिस पेखत किल विख हिरह, मन तन होवै शांत, एक मन एक त्याई है, मन की लाहे प्रांत, गुण निदान नवतन सदा, पूर्ण जाकी दात, सदा सदा आराधी है, दिन विसरहो नहीं रात, जिनको पूर्व लिखिया, तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो, सगल वारी है एह जिंद, देखै सुनै हदूर सद, कट कट ब्रह्म रविंद, किरत कणानु पालदा, प्रभ नानक सद बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा, मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार, सर्ब कला कर थापिया, अंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरी है, अंतर रख उरतार, मेरे मन हर बिन अवर ना कोय, प्रभ सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोय रहाउ, रतन पदार्थ मानका, सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा, कूड़े सबे साक, गिनकी तात सह ना जानी, मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर राव रहया, तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया, अंतर हों मैं कूर, भगती नाम विहूनिया, आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार, महा बिकट जम भया, नानक नाम ना विसरौ, कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा, मेरा तन अर धन, मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक, बहुत रंग अरवेस, हर नाम हृदय ना वसई, कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ, नाम निदान त्याई है, मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है, गुर की चरणी लाग, हों मैं रोग भ्रम कटिया, ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की, अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआउ, एथै मिलह वडाइया,
दरगह पावह थाम करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मार आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पये प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसिय बिनसे सर्ब जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा।

एक सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवा संत जन हो मिल भाई हो सच्चा नाम संभाल तुसा बंद हो जी का एथे उथे नाल। गुरपुरे ते पाई है अपनी नजर निहाल कर्म प्राप्त तिस होए जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुरजे वडे अवर ना कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहाव। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरनी जिन मन लगा सेवड़ भागी माए। गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर सालाही है करन कारण समरथ से मथे निचल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लगे खोज दिथा ब्रह्मांड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन मेहमंड। श्री राग महला पंजवा मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध भाई मीत सुरद किए बिख्या रचया बाद। जांदे बिलम ना होवई विण नावै विस्माद मेरे मन सतगुर की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यों कूकर हरकाया तावै दह दिस जाय। लोभी जंत ना जाने पाख अपाख सब खाय काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाय। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए तृष्णा पंखी फासिया

सम्मत पुरख अपार हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां घर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी भ्रमतियां दलाब जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवां टिचर वसह सहिलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात जां उठी चल सी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात पेयड़ै सहो सेव तू सहरड़ै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना सहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागनी।

किसहत आगु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना पौ ब्यापै।

आधारे पाप सगली जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ से वड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल

भाव मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही कहन कहावन एहु कीर्त करला कथन।

गुर परमेश्वर पूजीय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बच

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा पूर्ण।

सास ग्रहास न विसर सफल मूरत गुरे आप गुर जीवड़े अवर न दिसई आठ पहर किस जाप।

कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तेरे जुगह जुगह पंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावन।

हो सद बलिहार जाऊं सा धन रंड ना बैसई जे सतगुर माई समाय फिर री सालू नौ तनु साचो मरै ना जाय नित रवै सोहागनी

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाए अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाए जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल न लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हों किन कै बलिहार नै दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यों पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो

मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावै प्रभ सोए नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संयम साधिया तीरथ कीचै वास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जेहा राधे ते हालुण बिन गुण जन्म मनास मुंदे गुण दासी सुख होए अवगुण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोई रहाओ बिन रासी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार बिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चलै कारज सार बन जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है।

ये फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं, नाम भूली जे फिरा फिर फिरे आऊ जाऊं, पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई, राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई, नानके को रव रहया दूजा।

निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार राव सस दीप अनूप ज्योत त्रिभवन ज्योत अपार हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै भंजना देख निरंजन पाए गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राख ठाए ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाए नी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

ना होई, सुख दुख सम कर जानिए, शब्द भेद सुख होई, वेद पकारे वाचिए, वाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका, नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए, हौ सद बलिहारे जास, चहु जुग मैले मल भरे, जिन मुख नाम ना होए, भगती पाए विहूणिया, मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम वसारिया, अवगण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे घर वसे, हौ मैं तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले, जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला, सुन मन भूले बावरे, गुर की चरनी लाग, हर जप नाम त्याए तू, जम डर पै दुख भाग, दुख घणो दोहागनी, क्यों थिर रह सुहाग, भाई रे अवर नाही मैं थाऊं, मैं तन नाम निदान है, गुर दिया बल जाऊं रहाऊ, गुरमत पत साबास तिस, तिस कै संग मलाऊं, तिस बिन घड़ी ना जीवं।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको वडो वडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक।

जाने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होई रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूढ़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिन वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साचे नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावे नार इकतता गैराल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपे।

अतुल ना तोलिए, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजो लखाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिले र जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहण ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाईए रतन बिचार, मन दी जय गुर अपने, पाईए सर्ब प्यार, मुक्त पदार्थ पाईए, अवगण मेटन हार, पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद, वेद ब्यास कोई रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोई, सफलो बिरख हरियावला, शाम कनेरी होए, लाल जवे हरमान की, गुर पंडारे सोए, गुर पंडारे पाईए, निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए, पूरे कर्म अपार, सुख दाता दुख मेटनो, सतगुर असुर संगार, पवजल बिखमंड रावणो, ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिसवान्य मलार, सतगुर पै काबो हिथा, नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरे, दुख लागे सुख जाए, जिहवा जलो जलावणी, नाम ना जपै रसाए, घट बिरसे दुख अगलो, जम पकड़े पछताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत न साथ, बिन नावै तन बाद है, भूलो मार गयात, साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो काथ, आवे जाए पवाई है, पै किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मे

अपाय कै बिन जल मरनत ने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सुख कणु मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक

पापे खवै दुध कौ खफण ना दे पापे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर।

गुरमत हुए ता पाई सच मिले सुख होय सच्चा नेहो ना तुटई जे सतगुर भेटै सोय ज्ञान पदार्थ पाई त्रिभवन सोजी होय निर्मल नाम ना विसरै।

आए मनमुख सूझी ना पवै बिछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भलाई।

बाबा माया परम भुलाई परम भुली दोहागनी ना फिर अंक समाई रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाए भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाए तुरहों विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाए बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे से तीरतिया सच्चो पल्ले पाए पुल्लने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना वी

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाओ। नाम सलाही रंग स्यों, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो

तड़ी गुर बिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद पावे से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की घड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लबई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावई तित

साजिए एक चानण तेहो लोए कर्म मिले सच पाईए तुर बख्शना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाई अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहि समाए पी अमृत संतोखिया दरगह पैंदा जाए कट कट वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुपाए बिरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसह धौल हार बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उसारिया दूजे हित प्यार अंदर खाली प्रेम बिन तै ढेरी तन शार पाई रे तन तन साथ ना होए राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मलो।

मन मुख जाने अपने तिया पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावणु साकत डोल डोलाय बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाय मन मुख हो मैं कर्मुसी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देहोरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोई नाम मिहुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्स ना होए ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होए इउं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोए गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोए अगन मरे जल पाई है जो बारक दूदे माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास में।

तिसनो वाखी है जिस शेष ना होवी लेख असमान धरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चल निस सस चल।

अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

मोहे लुभाणा चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया किसकी कीम ना पाई।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पे अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हम मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तैसो हुए

सहज उपज होमे तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै होमे दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सो

जे सतगुर सेवन से उभरे हर से ती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम त्याए तुर पूर्व करता लिखिया इन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ बिन सतगुर प्रतीत ना आवे नाम ना लागो पाओ सुपनह सुख ना पावे दुख मह सवै समाए जे हर हर की कै बहुत लोची है कीर्तना मेटिया जाए हर का पाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिख फल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमावंदे बिख होमै तज बेकार मन हट कितै उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र शुद्ध हो जाए मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए हर का

होई, गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होई। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच चुगै गुर पाई,

गुर कै पाणे जे चल है ता अन दिन राचे है हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़े है चहो दिस जाहे, जेता उड़े है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाई। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाई। मनमुखी उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसी है ओना घर ना ग्राओ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊं, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊं। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट

नाम जप हो सुख होए, गुर पूरा सालाही है, सहज मिले प्रभ सोई रहाओ, परम गया पौ भागिया, हर चरणी चित लाए, गुरमुख शब्द कमाई है, हर वसै मन आए, कर महल सच समाई है।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाए, सहजे ही गुण उचरे, भगत करे लिवलाए, शब्दे ही हर मन वसे, रसना हर रस खाए, सहजे काल वडारिया, सच सरनाई पाए, सहजे हर नाम मन वसिया।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुत्था जाय। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाई सी शब्द मलावा होई, बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार। सहजे ही सूझी पई सच्चे शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिए निरपौ।

शब्द सलाही है जिसदा अंत न पारा वार। ज्ञानियां का तन नाम है सहज कर है व्यापार। अन दिन लाहा हर नाम लैन अखुट भरे भंडार। नानक तोट ना आवई दिए देवन हार। श्री राग महला तीजा सतगुर मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाय। पूरे शब्द सब सूझी हुई हर नामे रह समाय। मन मेरे सतगुर स्यों चित लाय। निर्मल नाम सद नवतनु आप वसै मन आय। रहाओ हर जियो राखो अपनी सरनाई। ज्यो राख है त्यों रहना गुर कै शब्द जीवत मरे। गुरमुख पव जल तरना वड्डे भाग नाउ पाईए। गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता। सहजे रहिया समाई इकना मन मुख शब्द ना पावे। बंधन बंद पवाया

सह सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच स्यों अपनी कृपा करे मलाए आपे करे कराए आपे।

जग जलता देख कै भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवा जाको मुश्कल अत बने टोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना साक पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै सब असराऊ केते आवै उस पार ब्रह्म।

करी ना किस होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म तानिह चल होवै राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय काम क्रोध मोह वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमुख सिमरत तरिया शास्त्र सिमरत वेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिकदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाय लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस की तुन अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरिया का खसम आप अवर ना दूजा थाऊं सतगुर तुठै पाया नानक सच्चा नाम तेरी राग महला पंजवां घर पंजवां जानो नहीं भावै कवन बातां मन खोज मार्ग रहाव ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्त तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुरग मच पयाल।

सिरे सिर तम दे लाया वेख कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावैनो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुतियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहियां से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखानिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटोह कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

दड़ाया। सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो। ठोक बजाए सब डिठिया, तुस आपे नयन छडाए जियो। हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा। सब सुखाली बुठिया, एह हुआ हले मीराज जियो।

बन जा रहा मित्रा, हर पाया उधर मंजार, हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा, हर हर नाम समार, हर हर नाम जपे आराधी, विच अग्नि हर जप जीवया, बाहर जन्म पया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवया, जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी, कर हृदय गुरमुख विचार, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर जपिए कृपा तार, दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा, लै मात पिता गल लाए, लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, दित्ते नो लपटाए, कोई गुरमुख होवे सो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाए, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, तिस काल ना कबहू खाए, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, मन लगा आल जंजाल, धन चितवे धन संचवे बन जा रिया मित्रा, हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई, एहो धन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई, जिसनो कृपा करे गुरमेले, सो हर हर नाम संभाल, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, जे जाए मिले हर नाल, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, हर चलन वेला आंदी, कर सेवहु पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा, सब चली रहन विहांदी, हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग होवो, हर सीती सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खोवो, गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलियो रहन भगतां दी, श्री राग महला पंजवा, पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, धर पाए ता उदरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रिया मित्रा, कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे, इस जनते वस किछ नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, धर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रिया मित्रा, मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेवया, सिर ठाडी जम जंदारा, धर्म राय जब पकरस बबरे, तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, एक संचय अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रिया मित्रा, अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे, साध संगत स्यों संग न किया, बहु जोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रिया मित्रा, तेरा दरगाह बेली होए, गुरमुख नाम संभाल प्राणी, अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई, सगली रहन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुर चानन होए,
कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए। लिखिया आया गोविंद का बनजारिया मित्रा उठ चले कमाणा साथ। एक रत्ती बिनवना देवनी बनजारिया मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ। लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो गो ऐसो खात। कहो नानक भगत सोह दरबारी मनमुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंड यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे। गुरमुख सहोरड़ कम सिखे सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए। सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे। मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे। व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा। हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा। अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया। व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी। एव कड़े हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सोहंदी। सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़े नाम संभालिया। सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया। हर संत जना मिल कार्ज सोया वर पाया पुरखे आनंदी। हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी। हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो नान मैं दाजो। हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवर मेरा काजो। हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया। खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया। होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो। हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी। हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया। नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी। श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले। संग सहाई हर नाम ते आई बिरथा कोई ना जाए। मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए। जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी ओ मित्रा दिख सागर संसारी। चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे। गुर पूरा भेटै वड भागी आठ पहर प्रभ जापे। आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी।
नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वछुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने।

ज्यों मरै, मिल मेरे प्यारे प्राण अधारी, गुण साध संग मिल गावे, नानक के स्वामी तार अनग्रहो, मन तन अंक समावे, दखना सोहंदड़ो हबठाए, कोई ना दिसै दूजड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर भेख ते चंतर, तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, बाणी विचारिय जियो, सिमरत सास ग्रास

हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे नाथ के नाते सब के साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन मार।

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान।

नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाएंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईआ, हर किने न पाया नाउ। विच हऊं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होईऐ, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एहलस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवैले। हर आपे भरम भलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हों बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर उठड़ाए। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणजवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुण तास। हर त्याहु सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग की वार महला चौथा। सलोका नाल सलोक महला तीजा, रागा विच श्री राग है। जे सच तरे प्यार, सदा हर सच मन वसै। निःचल मत अपार, रतन अमोलक पाया। गुर का शब्द बीचार, जेवा सच्ची मन सच्चा। सच्चा शरीर अकार, नानक सच्चै सतगुर सेवै। सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया, वेखण सुनण ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे पौड़ी।
हर इको करता एक इको दीमान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाहि डर भ्रम भउ दूर कर हर तिसै नु सलाहि जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भउ बिखम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदिया क्या चलै तिस नाल इक जागन दे नाल हन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला।

तब आपे तुदे उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वडियाई हर तुदहु बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्यावहु संत जन हो जो लय छुड़ाई। श्लोक महला पहला। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाव सबना जिया इका शाव आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो किसे आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कह पाछै जीवना पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे वे आप छुट्टे परवार सिओ तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके वसिया सोए वक्त भी चारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जिहे तिर देखा तेह तिर मौजूद। महला तीजा। गुर सभा एव ना पाई ना नेड़ ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर। पौड़ी। सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराण हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावह जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हो कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। श्लोक महला तीजा। कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै कबहू ना टूट सने हो। कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है करमी पल्ले पाए। पौड़ी। हरे अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो की

मन है कर्म प्राप्त होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़े सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै, धावत राखै इकत घर आणै, जीवत मरै हर नाम बखाणै, ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत संगत सिंह बाद रचाए, अनबिन दुखिया दूजै भाए रचाए, हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए, पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही, सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से सत

नहीं जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड तार पेखत ही जमराओ हसे ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिखिया रस इत संगत निश्चो मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै तां लागै भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत

जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कहे, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाई।

बदते त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जीओ का आचार्य एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाचै पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

आओ तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहु रविदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभउ गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया बड़ भागी हर नाम ते आया गुरपुर हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपुर हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो।

मित्र सखा सुप्रीतम भाई, मैं दस्ते हर नर हरियै जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरियै जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरियै जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावे, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लब्बै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस की चै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम ते आइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुर

प्यास प्या साथ मरी तुम ही संग मन लीना जियो यो बारक ती खीर अगावे ज्यो निर्धन धन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त पय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गहर गंभीर है।

पनीता सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाए वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावं उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बना

पोत पोत सेवक संग राता, प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता, पानी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक।

सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटहु जो मन तन तुद आराधे जीउ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीउ से वड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीओ तिनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीओ माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जीओ तू सूत मणिए पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत

लियो से नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो।

मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर बिरता कोई ना जाए जियो दया धारी तिन सिरजनहारी जी जंत सगले प्रतपारी मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वन त्रिण त्रि पवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता।

मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो धरते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावह ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जीओ, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, होए कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर मह आया जीओ, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानहु, तुमरी ओट गोपाला जीओ, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्या।

आय कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइय कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उदारी जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरखै अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरा पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियलो।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रतपाले, पै पै रीत सह मनाई जीओ। जा की सरन पया गत पाईए, सास सास हर नाम ते आईए। तिस बिन होर

मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिपतासे अनद खसम कह पाणे जीओ हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारी नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणी जीओ माज महला पंजवा हीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा टाहया जीओ मन पन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान ना दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आहया जीओ जो किछ करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपनिया संतां नु आप सहाई प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ चरण कमल जन का आधारू आठ पहर राम नाम वपारू सहज आनंद गावे हैं गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वस है हर जन

जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है

तिन्हीं सुख पाया सो जन्म न जूऐ हारी जीओ नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावहो दिन राती सफल एहा है कारी जीओ दृष्ट तार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सवेण होर दूजा नाई बाबा नानक एहे मत सारी जीओ माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारी सरबस दीजै अपना वारी आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

तरीजै सागर कटियै जम की पासा जीव। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा। काम क्रोध किल बिख गुर काटे, पूर्ण होई आसा जीव। पूर्ण भाग भये जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी। नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान गिरस्त उदासा जीव। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया। कर कृपा भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया।

आई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जियो अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाऊ आप जपाई गुरबो

निर्मल, जिन देखे सब उतरह कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनसिया भ्रम पहो तीठा जीओ, माज महला पंजवा, झूठा मंगण जे कोई मांगै, तिस को मर के कड़ी ना लागै, पार ब्रह्म जो सद ही सेवै, सो गुर मेल निचल कहना, प्रेम भगत जिसकै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी, बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसकै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन बुठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वार निश्चल पाइए, नानक कौ प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदियां।

पाया माया मोह चकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै ठाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया।

जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे तां किन दीऐ सुख नाही फुन दूऐ तीऐ आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मलावणिया आप करे।

सदा नाली, गुर प्रसादी को नदर निहाली। मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा, कर कृपा आप मनावणिया, माया मोहे एहो जग सुता।

गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवटी लावणिया। हो वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया। अंजन माहि निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा। गुरमुख हो ऐसो ही पाई, आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई। सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा। प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे

मन वसाई अन दिन सदा रहे भय अंदर भय मार भरम चुकावणिया भरम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

अंदर पीजै बैस सुथान हर गुण गावे है। आपे कर सत मनावणिया जिसनो नदर करे सो पाए गुर प्रसादी हो मैं जाई। नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवै वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई हर जीओ सफलो बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जीओ वारी सच संगत मेल मनावणिया। हर सत संगत आपे मेलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाउ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हौ मैं मैल गवाई दर सच्चै सो बा पावणिया। बिन गुर नाम ना पाया जाई सिद्ध साधक रहे बिन लाई। बिन गुर सेवे सुख ना होवी पूरै भाग गुर पावणिया। इहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखै मोर्चा ना लागै जां हो मैं सुखै। अनहत बाणी निर्मल शब्द वजाई गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर केहो ना देखिया जाए गुर कृपा कर आप दिता दिखाई। आपे आप आप मिल रहिया सहज सहज समावणिया। गुरमुख होवै सो इकस स्यों निवलाई दूजा भरम गुर शब्द जलाई। काया अंदर वणज करे वापारा नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार गुरमुख पाए मोख द्वार। आनंदन रंग रत्ता गुण गावे अंदर महल बुलावणिया। सतगुर दाता मिले मिलाया पूरे भाग मन शब्द वसाया। नानक नाम मिले वडियाई हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा आप मंझाए ता सब किछ पाई। गुर शब्दी सच्ची लिवलाई सच वणंजह सच संग्रह।

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलानी।

विद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जल राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद सत संयम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

मूड़ा बाहर पाली मनमुख अंधे फिर है बेताली जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे मनमुख परम भुलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम आधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए तेही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

अमृत बाणी मन वसाई अमृत नाम त्यावणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी अमृत वेखै परखै सदा नैणी अमृत कथा कह सदा दिन राती अवरां आख सुनावणिया अमृत रंग रत्ता लिवलाई अमृत गुर पर

तिस दा हुक्म मेट ना सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पिया वणिया। अजब कम करते हर केरे, एहु मन भूला जांदा फेरे।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेविया हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा त्रिपतासी कर कृपा तृष्णा बुझावणी।

नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसै थोड़ी किसै है कनेरी। तुझ ते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

अंतर मन मोह अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मनमुख भूला दूजे भाए खुआए नाम ना लेवै मरे बिख खाए अन दिन सदा विष्टा महवासा बिन

निरंजन सुई जिन सिर जीत ने आपे गोई नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाई।

सच राती सच सुन आख बखाननिया मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावनिया गुरु कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावनिया जो सच राते तिन सची लिव लागी हर नाम संभाल है से वडभागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावनिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावनिया पढ़ पढ़ था के शांत न आई तृष्णा जाले सुध न काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावनिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरत है सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावनिया हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावनिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे हौ मैं मैल गुर शब्दे ढोवे निर्मल वाजे अनहद धुन बाणी दर सच्चे सोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे निर्मल नाम लगे बड़भागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल।

मैला खाई फिर मैल बधाई मनमुख मैल दुख पावणिया मैली निर्मल सब हुक्म सबाई सी निर्मल जो हर साची पाई नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सोह हत उजल नाम त्यावणिया हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुनावणिया रहाउ गोविंद गावै सहज सुपाई गुर कै भै उजल हौ मैं मल जाई सदा आनंद रह भगत करह दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई गुर कै शब्द मनै मन मलाई।

माया मोह इस मनह न चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी वज्जै शब्द बजाई, गुरमुख भगत थाई पावनिया, बहुताल पूरे बाजे बजाई, ना को सुने ना मन वसाई, माया कारण पिड़ बंद नाचै, दूजै पाए दुख पावनिया, जिसे अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संयम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याई, एहा भगत हर पावनिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया, माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सालाही, सच्चै नाही दुख कब ही नाही, सुख दाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावणिया, हौ वारी जियो वारी, सुख सहज समाद लगावणिया, जो हर सेवह से सदा सोह, सुबा सुरत सुहावणिया, रहाउ सबको तेरा भगत कहाय, सेई भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावणिया, सबको सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाहीं रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया, गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक सस्यों डिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाई, नौ निध नाम वसया मन आई, पूरे भाग सतगुर पाया।

दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुरपूरै भाग मनावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुरप्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हों मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जीओ वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे।

शब्द पुछान गुरमुख मरे ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर शोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरे कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारनिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हूं मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख आन दिन शब्द राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया वाज गुरु है अंध अंधारा

आपी शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजै अमृत बाणी, गुरमुख आख सुनावणिया, आपी करता आपी भुगता,

घर ही मह प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहै सुखदाता। गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हों मैं मेरा, जमन मरन ना चूकै फेरा। गुरमुख होवै सो हों मैं मारी, सचो सच त्यावणिया। काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलकै सृष्ट उपाई। दुए मार जाए इकत घर आवै, गुरमत सहज समावणिया। कर ही माही दूजे पाए अनेरा, चानण होवै छोड़ै होमै मेरा। प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया। अंतर जोत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा। कमल बगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मलावणिया। अंदर महल रतनी भरे भंडारा।

नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर कै शब

वारी सत सच्चा हृदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेव है गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा में एक थान सुहाया पूरे गुर हम मैं परम चुकाया अन दिन नाम सलाहन रंग राती।

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे पाए कर लाई नाम भूले दे सजाए कड़ी मोहत का लेखा लेवे रतियों मासा तोल कढावनिया पे यड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोए ताही खरी कवाले उकरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे यड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावनिया।

पाड़ बोज मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है दर सच है सोबा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किसु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बढ़ाई मन मुख आंधे से कर्म कमाई हलत न सोभा।

गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवणिया रहाउ। वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद वखाणे मोहे माया। अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथिए शब्द सुहावे, गुरमती मन सचो पावे। सचो सच रवह दिन राती, इहो मन सच रंगा मणिया। जो सच रत्ते

किन्ना महल ना लागे, गुर प्रसादी अन दिन जागे, निर्मल नाम वसै कट पीतर, ज्योति जोत मलावणिया, त्रै गुण पढ़े हर तत ना जाने, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाण, मोह व्यापी किस सूजे नाही, गुर शब्दी हर पावणिया, वेद पकारै त्रिविध माया,

मोह जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवै बिन नावै बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपर।

मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै जिन पिया से त्रिपतासी सच्चे सच अगामणिया।

आज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता, कौन सो गृही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए लियो, किन बिद बादा किन बिद छूटा, किन बिद आवण जावण टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, होमै बादा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहे समाए जियो, माज महला पंजवां, प्रभ अबनासी ता क्या काढ़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखा।

राख कमलावती उपजह नाही दाम। हर लाह न मिलिए साजन है कत पाइय विश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से।

जिसका निह चल ताम चेत गोविंद अरादिया हुए आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आई तिसह गणा एक खेन किस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठ तंद मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीत

प्राप्त होई। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोई। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावन लगियां

जेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाढ़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये भाई वगुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै।

जिनको साधु भेटी है सो दरगहा हुए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार। मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार। हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार। जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार। भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत। छड खड़ोते खिनै माही जिन सियों लगा हेत। हाथ मरोड़ै तन कपे स्याह हुआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादोए नरक ना

तन तन प्यास दर्शन कणी कोई आण मलावे माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाई आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह न जाए प्रभ विण दूजा को नहीं।

दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े हुए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशु ना हो वही लिखिया तुर संजोग बड़ भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग बिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहेलड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाह मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह बिख्या पोहे ना सकई मिल साधु गुण

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगा शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान काम

सलाहिए जिसनो तिल ना कमाए। जिन जिन नाम ते आया इनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरी। सर्व सुखा निद चरण हर भौजल बिखम तरी, प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे, पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करहु हरी।

आप त्याग सरनी पवां मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिठे सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुनी हर समृत पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरे पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो ननहार मन तन अंतर वस रही नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती नजिंद गुर शब्दी आराधिये जपिये निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइये परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिये भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरे सो हरिया होवे जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मान्य निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाऊ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाऊ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआव सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाँव वार माज की तथा

प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार पपन्नी खेड पंजवे खान पीयन की तात छिवे कामना पुछे जात सतवें संज किया करवास अठवें क्रोध।

कर्म कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए, तू आपे खेल करह सब करती, क्या दूजा आख बखानिए, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणिए, नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजाणिए, पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक, तुदे आपे तंदे लाया, मोह ठगौली पाए कह, तुदे आप हो जगत खुआया, जिसना अंदर अग्न है नह तिपतै भुखा त्याया, सहसा एहो संसार है मर जमै आया जाया, बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम त्याई है सुख रजा जां तुद पाया, कुल उधारे अपना धन जने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया, सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना, विन हत्थां करना जीबै बाजो बोलना।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खटिया भगती परे भंडारा।

साथ इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हामाता भरी जा मुरदार न खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टे सच कमाई मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सुनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाई पौड़ी एक रत्न पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठे पाईयन अंदर रतन भंडारा बिन गुर किने ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजे पच मोए ना बूझे विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करह पुकारा एक निर तन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो है तीनवा सोम हो है दुध कीओ सगली धरती सक्कर हो है खुशी करे नित जीओ पर्वत।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखिय है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखिए।

जिस मन वसिया सुई नानक अवर न जीवै कोई जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए राज रंग माल रंग रंग रत्ता नचै नंग नानक ठगया मुठा जाए बिन नावै पत गया गवाए महला पहला क्या खादै क्या पैंदै होई जा मन नाहीं सच्चा।

ती तात बोला जे समझाई है भरी है सिमरत पाठ अंधा चानन रखी है दीवे बल है पचास चौने सोयना पाई है चुन चुन खावे कास लोहा मारन पाई है कह ना हुए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश महला पहला कहा कंचन टुटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती टुटे पतार पुती गंड पवे संसार राजा मंगे दिते गंड पाई भुखिया गंड पवे जा खाए काला गंड नदियां मीह झोल गंड प्रीति मिठे बोल वेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरतै संसार मूर्ख गंड पवै मोह मार नानक आखै एहो विचार सिखती गंड पवै दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखण हार खरे खजाने पाई है खोटे सटी है बाहर वार खोटे सच्ची दरगाह सुटी है किसे आगे करह पुकार सतगुर पिछे भज पवै है एहा करनी सार सतगुर खोट्यों हो खरे करे शब्द सवार नहार सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करी जो आप बख्शे करतार सलोक महला पहला हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाय का राया मेर अबद बादशाह अफजू खुदाई एक तू ही महला पहला ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला ना दादे देहांदे आदमी ना सपत जेर जिमी अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला प्रंदे ना ग्रहा जर द्रखत आभ्यास कर देहांद सुई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया।

गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया, विस्ता अंदर वास साधना जानिया, बिनमावै दुख पाए आमन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरग।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वा जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवै दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार है लाग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है सलोक महला पहला तुद भावै ता वावह गावह तुद भावै जल नावह जा तुद भाव

कहावह। जां तुद भावै ता होवै राजे, रस कस बहुत कमावह। जां तुद भावै तेग भगावह, सिर मुंडी कट जावह। जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह। जां तुद भावै नाहिर चावह, तुद पाणी तू भावह। नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड कमावह। महला पहला। जा तू वड्डा सब वडियाईया, चंगा चंगा होई। जा तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला। कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई। विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिदगत होई। महला तीजा। कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी। भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया। करता आप अभुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलियन, जिन्नी सचो सच कमाया। संसारी आप खुआयन, जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया। भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया। दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया। ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया। श्लोक महला पहला। सबाही सलाह, जिन्नी त्याया इक मन। से पूरे साह, वखतै उपर लड़ मोए। दूजै बहुते राह, मन कियां मती खिंदियां। बहुत पए असगाह, गोते खाहे ना निकलै। तीजै मुही ग्राह, भुख तिखा दोए पौंकियां। खादा हुए स्वाह, पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लईन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उतै अमृत वंडी है करमी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए। सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान।

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला।

मंत्री होए अठूहियां नागी लगै जाए आपण हथी आपणे दे कूचाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अती हूं धक्का खाए गुरमुख स्यो मन मुख अड़े डुबै हक न्याय दुहा सिरियां आपे खसम वेखै कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जा।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लभ ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को।

तृप्तिया सायर परेत सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निह पलंग तस जन्मस जावत ब्रह्मना बिंदते सागरं संसारस गुरु।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नहातै जित वडियाई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक तां पत जानी है जां पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा भी बाण होरिया मन जानिया सच जे मंगह दान से तुदै जेहया सच तेरा फरमान शब्दे सोहया मन्या गया।

लह परांत हुए जिस दात पौड़ी हो ढाडी वेकार कार लाया रात जह कहवार तुरो फरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम पूजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

डूबै तरै जिन किस किया सो किस करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगै पाछै हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानके आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन भू

नाम हृदय अमृत मुख नाम नर हर नाम नर हर ने काम रहाउ सहजी आवे सहजी जाई मन ते उपजे मन माही समाई गुरमुख मुख तो बंद ना पाई शब्द विचार छुटे हर नाई हरवर पंखी बहो निसबास सुख दुखिया मन मोह विनाश सांझ बिहाग तकह आगास दह दिस तावह कर्म लिखियास नाम संजोगी गोइन थाट काम क्रोध फूटे बिखमाट बिन बखर सुनो घर हाट गुर मिल खोले बजर कपाट साध मिले पूरब संजोग सच रहस्ये पूरे हर लोग मन तन देले सहज सुभाए नानक तिनके लागो पाए गौड़ी महला पहला काम क्रोध।

मुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया।

नानक दर घर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत धार गगन दस द्वार, त्रे पवन बेदिया आप मरार, रे मन मेरे भरम ना कीजै, मन माने अमृत रस पीजै, रहाउ जन्म जीत मरन मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कार करते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

थाओ नानक गुरमत सहज सुमाओ गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई मरन रहन रस अंतर पाई गर्भ निवार गगन पुर पाई मरन लिखाए आए नहीं रहना हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ सतगुर मिले तदुबदा भागे कमल बगास मन हर प्रभ लागे जीवत मरे महारस आगे सतगुर मिले सच संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा कर्म मिले जम का पौ मूचा गुर मिले मिले अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक हों मैं मार मलाया गौड़ी महला पहला।

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिय डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांदे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जां कै हृदय बसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लब लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुड़दी देखी, ज्यों तारी ऊपर शारू, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोभा पलत ना ढोई, अहला

सुन मूरख मन अजाना होग तिस का पाना रहाऊ। साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी। जियो पिंड सब रास तिस की मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना।

थी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताई मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आए।

राम का मूड़े फिर पाश पछताहे रे रहाउ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की तेरा नाम बकर वापार जी रहाउ कोकिल हुआ अम्ब बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले।

सहु वसै हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाय। नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचार। तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं। जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

वै जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुवारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप्पे हैं बहुत दुख पाव है नचे टप्पे हैं भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

साई। गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तिन कहो जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा। एक सते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा। पिन पिन वेखे हर प्रव रंगा, एक अचरज एको है सोई। गुरमुख विचारे बिरला कोई, रहाउ सहज पवै प्रभ सब नीथाई। कहां गुप्त प्रगट।

राम जपहु हो पवजन उतरु हो पार रहाउ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

की धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी पर गासिया, बिन पगा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किस करते है।

तेरी तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

अल्लाह चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोबिंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख फसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे।

अन खाय, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाय, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोच पूर हमारी, रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारी सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिगसै देखै माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वार री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी, गुर सिख हर बोलो हो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई, रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अन दिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई, ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, गौड़ी ग्वार री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर, रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारिंग अमृत तारा, हर अमृत आप पिया मनहारा।

त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंद है कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सू

हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपने, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत ना आवे तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लह हर पावे हम अपराधी राखे गुर संगति अपदेश दियो हर नाम छडावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा सा बिद तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले तूके सब सोग संतापे गौड़ी बैरागण महला चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून नाम।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राख नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रत केरी कोई जानो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कह किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों।

हम सतगुर पार ब्रह्म करमानी, हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर

नानक मोहे पहचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा। हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ। सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाव। मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ। गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लाहा हर मन हसीऐ। हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ। मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ।

नरहर जित सेवय लेखा छुटिय जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिय गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम

अन दिन अन दया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है क्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगे सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अपागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया। हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया। राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ मेरा ही अरे प्रीत राम राय की। गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे। जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को। गुर हृदय नाल दिखाया सहज आनंद भया मन मोरे। गुर आगे आप बिचाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजै शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे। गुरमुख हर लिव लावे रहाउ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा। मन गुर की कार कमावे हम मल मल तो वह पाव गुरु के। जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगानी फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवह संत हो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंग माण रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। हर तुठै टुल टुल मिलिया।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पाए अड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जीव हर

एक राजे तख्त बह नित सुखिये, एक ना भिख मगाया जियो। सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मन माही।

हर हर नाम परगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हों तुद विकटने हों सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट।

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जीओ, हर मेलो संत जीओ। मन लगा पाओ जीओ, गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जीओ। वड भागी जप नाओ जीओ, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ। हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जां जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो।